प्यारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे।

जबन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जबन काल सब जगत बनायो, देव दय जशन उपजायो।

संभव आज उगा स्वरूप स्वयं पव वरचा मेरी तुम करो सिख्यो वर सिख्य संघरु दुष्ट जिते उठ बत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुवै मरे पुरख जबन भग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट न आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद सिद्ध करमो सब होई दुष्ट शाश्वत सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा

बचाए। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखे अनकोशय करता, श्री अस्तुजा पय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काल मान।

श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा प्रसंग दोहरा साद असा जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

पर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञान कान्ह बिनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चिंत ब्रह्म ज्ञान का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञान जिस कर प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञान का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञान को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञान का खोज हम ईश्वर नानक ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा दिह ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाया दाखी और ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानु ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीवन मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जिया का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष।

अवतार तब नरक स्वर्ग कहो कौन या अवतार जब निर्गुण प्राप्त सहज सुभाई तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप अपने जो अवतर है तब कौन निडर कौन का डर अपने चल ताप करने हर नानक ठाकुर अगम अपैर अविनाशी सुखा बनासन तह जनम वरण कहो कह बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सूय तब जम की त्रास कहु के सूय जब अवगत अगोचर प्रभि का तब चतुर गुप्त कह पूछत लिख जाव नाथ निरंजन अगोचर गति तब कौन छुट्टी कौन बंधन वैदी अपना पाप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही अपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पा तूता तह बिन मैल कहु क्या तूता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शद लगत कहुगीस जह जो स्वरूपी जो संग समाव तह किस भूखा द्रवता करण करावन करण नन करति का नह संवार जब अपन शुभ अपन संग बनाय तब कवन माय बाय मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेद देव कह कुचीन जब अपन आप गुर तारा तव सगन अब सगन कह विचार जह अपन ऊच अपना नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चीरा विस्मन विस्मरे विस्मार नानक अपनी गत जन हो जहाँ शाल शेद भेद समाया।

अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखै वेद पाठ पुराण आखै पढ़े करहे वख्याण।

है या भय है या जीत है या भीत है त्रिमाण है निदान है त्रिपर्ग है या सर्ग है या नील है या नाद है या जय है या जाद है अजन्म है या वर्ण है या भूत है या भरण है या गंज है या भंज है या झूझ है या झंझ है अमीक है रफीक है या तंद है या बंध है नृभूज है या सूझ है अकाल है या जाल है या लाह है या जाह है अनंत है महंत है अलीक है नृसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अशूत है अलोक है अशोक है अक्रम है अभ्रम है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमाण है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व भौणे अनंगी अनाथे इंद्रसंगी प्रमाथे नमो भाण भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भाण भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो भाण भाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते

मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो एस्ते नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच दानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधोर्ध अर्धंग आगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरंग प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदी अभेदी अनामंग कामंग समस्तो प्राजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं भजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनंगी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्वंग नृनाथे नमस्वंग प्रमाथे नमस्वंग गंजे नमस्वंग पंजे नमस्वंग काले नमस्वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेसे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग

रखिया कारण लिखे है के कई वरी चंद्रहांस इस तरह हाथ जोड़ के बहंदा हुंदा सी ते कृष्ण भगवान ने भी बालक दा रूप धार के कोल बह के बांसुरी वजाया कर क्योंकि भगतां दा मन बड़ा कोमल हुंदा है साफ हुंदा है तेरा जिन्हां दा मन कोमल होवे।

सगल समग्री तुम रह सूतर तारी तुम ते हो एसो तुमरी गत मित तुम ही जानी बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदस हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस जठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करन उन दयावै ताए साब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय

0: अष्टपदी।
1: जे प्रसाद छति अमृत खाहे तिष्ठा कर को रखमन माहे।
0: जे प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पावे।
1: प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर।
0: जे प्रसाद ग्रह संग सुर बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना।
1: प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग।
0: जे प्रसाद पाठ टंबर हटावे तिसे त्या कत अवर लुभावे।
1: प्रसाद सुख सेज सोई जे मन आठ पहर ताका जस गवीजे।
0: जे प्रसाद तू सब को मन मुख ताको जस रसन बखान।
1: प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जपत धर के मान पावे नानक पद सेती घर जावे।
1: प्रसाद रो कंचन देही लिबलावो तिस राम स्नेही।
0: जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: तेरे सगल शिदर ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके।
0: जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु उठे।
1: प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे।
0: जे प्रसाद आपूखन पहरी जाए मन तिस सिमरत क्यों आलस की जाए।
1: प्रसाद असव हस्ता सवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी।
0: जे प्रसाद बाग मिलक धना राख रोए प्रभु अपनी मना।
1: मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई।
0: तिसे त्याई जो एक लखा यहा उहा नान तेरी रखा।
1: प्रसाद करे पुन बो दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।

0: अष्टपदी।
1: साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मिल मल सगली खोत।
0: साध के संग मिटाय अपमान, साध के संग प्रगटा सुज्ञान। साध का संग पाए नाम रतन, साध का संग एक ऊपर जतन। साध का संग गोचर मिला, साध का संग सदा पर खुला। साध संग होय सब की रीन, साध का संग मनोहर बैन। साध का संग माया ते भिन्न, साध संग नान प्रभ सो प्रसन्न।

साध का संग नाही हो ताप, साध का संग तजा सब आप। साध का संग ना कबहू तावै, साध का संग सदा सुख पावै। साध का संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु का कुर्बान। साधु का संग सो धन पावे, जिस धन के सब को वरसावे। साधु का संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध का संग नहीं काश काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध का संग इहा उहा सुहिला, साध संग बिखरत हर मेला। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उतरै साध सुन रसै। साध का संग ना मन ते बिसरा, साध संग सर पर निस्तरा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भय हमारी। साध की महिमा वेद न जान है, जिता सुन है तेता बख्यान है। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा।

0: मन होए परगास जैसे तरु पर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अपमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा मन अपने है सबते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भए नानक जन प्रभु आप करी।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया।
0: सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का।

0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन रखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना।
1: ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवा नहीं मरता।
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।